राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TV को साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउंड होस मात्र रु 999 मा र 175 प्लस च्यानल सहित को फीचर फुल Via TV मात्र रु 150 मा। इंटरनेट ओन्ली र टीवी सहित को अन्य पैक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: हाम्रो पन, हाम्रो गौरव, नेपाली रेडियो, नेपाली आवाज,
2: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज।

ये या किपली जी गुछे छे बुया नाम भथा गु छे छका बाहेक मेगु छु मदो जिसम मामुली पिउनिया जागिर नया छु नाम पेद दुम कैतो ता जिमी जहान झाडा बन्ताए लो छ मन त जिगु जीवने तधुङ्गु बुखा पोल एन जी निराश मजुया जिगु मन मन निश्चय यान न्या गुहे सङ्घर्ष या मासा न जे खाया त बोलङ्के अफसा निसे जे क्या न्या थ्या वसा लु लु न्या तया चुया अफिसे चोपी हाकिम तेस न तक मसी भुवन बिल तयास ए अफिसे म चाहे मजिल का मिग मसी थले चुङ्गु मसी फुक्क हे वाका बिल उख्नु न प्रशासन फाटे पोहे खुना बिल ह थजाको ताला मज्यो नै तर जे बेवस छम पियोनिया मनियाको वेदना टन्ल पेचे चुनीमा हाकिम छुस्यो हाकिम तेगो कचकच निसिमे बरु छछा जक नेमासान ने दैगु मति तया काया त स्कुल भर्नाइना बिया मचा भालक बन आखिर छनु एसएलसी न पासुल एसएलसी पास या वा अफिस हाकिम या त धया जिगु हे अफिस खरदार जागिर नका जागिर या नाप्न पा आँख न बना हे चुन थुक त जिमी बौका निमेस्या जीवन हना चुना बुरा ठुले धया सुमको चुना झोला भातुवाल छुमाला दियाको बाबा झिङेना चुरो छप देमागु कन लाथे झिके दुनी चुरोट चुरोट छप बिहा च्याके धुम्का हाक्न निना अले अरे छनु जिमी क्या छगु प्रोजेक्ट हाकिम नजुला क्या हाकिम जुबले जिगु नुग घन्थेन जु छिहे बिचाएना दिस जिगु तुतिला भूमि हे पलामला थेजु मजिउ नगन वदम वदमसी नसे मनसे दुःखसियागो फल भोग्या दुगो छनु बहने क्यान किपली चुङ्गु छेमिया मेथा चौनिगो अलि जित जागिर तोत्के बिगो सल्लाह बिल तर जी माने मजिया थगु कुल छेन सुनान मिला सो बाबु जी जागिर तोते मखो थगु कुल छेन मि मखो ओहे जागिर छन् त तुते चुइका थौ हाकिम जुल दासीले ओहे जागिर या त लात्न कि उला थोख जे त लुम तर छुया ऊ माने मजु जिगो जागिर याना वैगो इज्जत धक्का जुल ह अले प्रोजेक्ट हाकिम जुगुले मोटर दुहाउङको भङ्गलामा लह होइको खन्जना जे अक्क न भक्क जुला छखे खथे नचुनाउल अथे खसा छ सोया यथे बबदका धयाबिया जुगु खन्जना लिपा किप्ली चुङ्गु छेमिया पानेश्वर जगन्याना बङ्गला दन जिमे भौकानी म ओहे बङ्गला चुहना जे सन्तोष या सासलाना तर आका झाका करेन्ट बन्द जुथे बुराया मुतु ठ्याप्प हे बन्द जुल जे ओको खले सोया पुरा झ्याउने चुङ्गु टाढा

0: मै रेडियो च्याकिसा नेनमाला
1: ज्यू बा
2: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज
3: छेदनीगु नीति ध्यान बि मागु खे येला महानगरपालिका या सूचना
4: नक्सापास निगु चरनेजी नापा डीपीसी तक जुइसा नक्सापास जु कठ डीपीसी याना तगु जुसा जक वये लिपा डीपीसी चुए या नक्सापास जु
3: डीपीसी नक्सा स्वीकृत अस्थायी नक्सा पास जुगु दछि दुने डीपीसी यामा मजुसा खुला दुने न्यागु प्रतिशत दस्तुर पुला म्याथ थप याफै थुकथ ज्यापु अंकाली हन निदया नीति म्याथ तनिगु ज्याजुई डीपीसी शिविर छुए स्थायी नक्सा पास जुगु म्याथ निद तकजुई निदल दुने पु मवासा म्याद फिन ह म्याद तनिगु नीति निवेदन बीमा थुकथ निवेदन बिलकी मेगु निदया नीति म्याद तनि ज्याजुई
4: ध खुशिया मापदण्ड बालक ध्यान बिया छेदनीमा ठोकठहे छेद देखिगु नाप्नाप टस्क तजा मजुई कठ जोकी मजुईको सीमा नपीमा
0: तालमै रेडो देगुला रेडवा खने छित माउजुको कनी चिन छेदन माउ जखिले दुहे खनियन दत्का नु चिन उनी महानगरपालिका नक्सा पास या त

बहनी तेना में सिया निहा मी पु मथे वाथर वक्त कना चना कोठा छगुली चा चा ही कुथे इकुया वोला निहा वे किता सोया मफो खाली वो मनोते धाकु खंजक जिगु न्यापने धुन न थोया चना वह हाकिम तो चना चंगु कोठा जिगु मिखा चल चल खना चना कबले क्या गो खालु मुनी गो कबले इमी गो खालु मुनी गो मने भ भलुम न वया चना उफ मालका इमी सला जित मोह सिल्का कानोला मसिउनी अबले न वहाँ थगु मुती दौफिना तल्ला छुजी त अबुदका नलाका मछाला जी कुली नसे मनसे बोलङका आख भुङका तैगुया नतिजा थोए खला बेस्तया छटपटे जुया चौमा मनुथे जी वाथवा त कना चना गभाय त नि गभाय त मस्यु गबले झ्याबल्थे

बुराईको घटना न्यून्य मसी गुब्ले घिउ वाला थे खने खुनो दनाबले बुरा मदे रुकला जुगो मिख्या बुराई गुखा जल जल नुमना होया छुना अले बुरा कंगु ख जुगो नुगले गब्ले महुई को छाप तया थकला शायद आन कुली दनी जी जुगो समाजे थजाको बाखा था।

0: राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, फाइनेट र फायर टिभीको साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउनुहोस् मात्र रु 999 मा, र 175 प्लस च्यानल सहितको फीचर फुल फायर टीवी मात्र रु 150 मा। इंटरनेट ओन्ली र टीवी सहितको अन्य प्याक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।
1: हाम्रो पन, हाम्रो गौरव,
2: नेपाली रेडियो, नेपाली आवाज,
1: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज।

राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TV को साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउनुहोस् मात्र रु 999 मा र 175 प्लस च्यानल सहितको फीचर फुल Via TV मात्र रु 150 मा। इन्टरनेट ओन्ली र टीवी सहितको अन्य प्याक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।

0: नबिल ब्याङ्क सँगै अघि।
1: राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TV को साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउनुहोस् मात्र रु 999 मा, र 175 प्लस च्यानल सहित को फीचर फुल Via TV मात्र रु 150 मा। इंटरनेट ओन्ली र टीवी सहित को अन्य पैक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।

0: हाम्रोपन हाम्रो गौरव नेपाली रेडियो नेपाली आवाज
1: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज।

जिगु छे काठमाडौँ ये धागुली जिनछम यिमिया नाता थोहे नाथा जुगु न्याना बुख थजागु बुराया अवस्था तीर्थेवना जीवन हनी दैगु अपुगु खम्मुखनी बाबा अथि तीर्थ थिङ्कोना बाँकी जीवन फुके दैगु अर्थ नलु दैनी बाबा जिगु खन्याना बुरा हाँक्न पाछा धुङ्कुगु झोला दिका बुलु फेत त जितस्क सोल अले धाल काजे खला थोख आतक झिँ स्वेत कनागु न मधुने सुनान न्यङ्गु न मधुने थौ तकना उकुस मुकुस तना जिगु मन्दुने इलिङ फिलिङ सनाचुङ्गु वेदना तर थौ थौ छिए निनेको इच्छा या त नेना दिस ओइगु मुतु मचा कहे खबा होला।

बहनी तेना में सिया निहा मी पू मथे वाथर वथक कना छना कोठा छगुली चा चा ही कुथे इकुया वाला यहाँ वे कि सोया मफो खाली वो मनोते धाको खज जिगो न्याप्ने धुन न थोया चुन वह हाकिम त चुना चौंगु कोठा जिगो मिखा झल झल खना चुन कबले क्या गो फालु मुनि गो कबले इमी गो फालु मुनि गो मने भ भ खलुम न भया चुन उफ मल्का इमी सलसी त मम सिल्का कानोला मस्यु नि अब्ले न वा थ गु मुती दौफिना तल्ला छुजी त अबुदका नलाका मछाला जी कुली नसे मनसे बोलङ्का आख भुङ्का तैगुया नतिजा थोए खला बेस्तया छटपटे जुया चौमा मनुथे जी वाथवा त कना चना गभए त नि गभए त मस्यु गब्ले झ्याल्थे

थोए जाजुले झिसी त मेगु छपो बाख यङका पम्पलेट सारा साँचो या दुईको थुगो बाख निभोसे थोए जाजो पाखे जी सूरजवीर बजुवा चरेन छिनाप ब्याथेन वैगु आइतबा हाक्न नाप्ला थोइने ती ठुली हेजुल सुभा।

0: हाम्रोपन हाम्रो गौरव
1: नेपाली रेडियो नेपाली आवाज
0: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज।